बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथा।

आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब।

संगत नू अपने दारों करों सिखी सिद्धक भरूसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनी आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਟੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨikhil kumar। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की

0: करनी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमडीएल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: याद रखो जीवन विच ये सिर्फ साढ़े शुद्ध ते नेक विचारां राही ही जो असी भजन सिमरन विच अगे वधदे हां। जिवें जिवें विचार शुद्ध हुंदे जांदे ने भजन सिमरन विच ध्यान केंद्रित करना आसान हो जांदा है अते भजन सिमरन राही असी स्पष्ट तौर ते समझना शुरू कर दिंदे हां कि असी असल विच की हाँ अते कौन हाँ।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्रीराम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्रीराम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्रीराम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: 8:05 ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 8:15 ਸੁਰਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸੀਮ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਮਸੀਹੀ ਭਜਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। 9:15 ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ। 9:30 ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 10:00 ਬੀਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। 10:20 ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਿਤਾਰ 'ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਏਸੀ ਪਰਚੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य 20 रोजगार इति आजीविका मेलकस्य अन्तर्गतं विविधेषु प्रशासकीयेषु विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 150,000 नियुक्तिपत्राणि दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन वितरिष्यति। प्रधानमन्त्री अस्मिन् अवसरे उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयिष्यति। इदम् आजीविका मेलकम् देशस्य 45 स्थानेषु आयोजयिष्यते। नवनियुक्ताः अभ्यर्थिनः भारत प्रशासनस्य विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च कार्यभारं स्वीकरिष्यन्ति। एतेषु राजस्वविभागं रेलमन्त्रालयं गृहमन्त्रालयं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयं वित्तीय सेवा विभागं रक्षा मन्त्रालयं च समेत्य अन्ये विभागाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां पर्यावरणस्य वातावरणगतिशीलतायाश्च भविष्यः इत्यस्मिन् विषये आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। द्विदिवसीयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं राष्ट्रिय हरिताधिकरणेन क्रियते। सम्मेलने पर्यावरण विशेषज्ञाः सर्वोच्च न्यायालयस्य उच्च न्यायालयानां जनपद न्यायालयानाञ्च न्यायाधीशाः भागं ग्रहीष्यन्ति। विभिन्न मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणश्चापि कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। सम्मेलने 17 देशेभ्यः प्रतिष्ठिताः न्यायाधीशाः न्यायिकप्रतिनिधयश्च सहभागं करिष्यन्ति। भारतं संयुक्तारबामीरातश्च प्रादेशिका शान्तेः सुरक्षायाः स्थैर्यस्य च संवर्धनाय कृतेषु प्रयत्नेषु निरन्तर सहकारं समन्वयं च प्रति स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुनः प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह ह्यः संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन दूरभाषेण सम्पर्कः कृतः। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानानां घटनाक्रमाणां विषये परस्परं विचारान् प्रकटितवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्यां व्यापक सामरिक सहमतिम् अधिकं सुदृढीकर्तुम् ऊर्जा रक्षा प्रौद्योगिकी निवेश स्वास्थ्याञ्च समेत्य नूतनेषु उपायेषु चर्चा कृता। संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरे हार्दिक्यः शुभकामनाः प्रेषिताः तथा भारतस्य सफल ब्रिक्स अध्यक्षतायै तस्य अभिनन्दनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलने शेख खालिदस्य सहभागितायै तथा भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं महत्वपूर्णानां परिणामानां प्राप्तौ सति संयुक्तारबामीरातस्य सहयोगस्य सहमतेः च प्रशंसां कृतवान्। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रसंघस्य निर्वाचनाय मतदानप्रक्रिया ह्यः सम्पन्ना। अस्मिन् निर्वाचने 8.41% मतदानं पञ्जीकृतम्। मतदानं द्वयोः चरणयोः

0: सम्पन्नम्। ध्यातव्यमिदं यत् अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव चेत्येभ्यः पदेभ्यः मतदानं जातम्। मतगणना अद्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य उत्तर परिसरे स्थितस्य विश्वविद्यालय क्रीडांगणस्य बहुद्देशीय सभागारे भविष्यति। ऐषमः एशिया क्रीडा महोत्सवस्य 20वें संस्करणस्य भव्योद्घाटन समारोहः अद्य जापान देशस्य आइशी नागोया स्थिते पालोमा मिजुहो क्रीडांगणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 2:30 आरप्स्यते। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री मनु भाकर अथ तजिंदर पाल सिंह तूरः च उद्घाटन समारोहे भारतस्य ध्वज वाहकौ भविष्यतः। एशिया क्रीडा अद्यारभ्य अक्टूबर मासस्य 4 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेब 347.6 मेगाहर्ट्ज़ 73 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज चुके ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। भारत अते संयुक्त अरब अमीरात ने खेतरी शांति सुरक्षा अते स्थिरता नू उत्साहित करन दे यतना विच निरंतर सहयोग अते तालमेल प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। सरकारी खेतर दी हवाई जहाज निर्माण कंपनी हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने बंगलुरु विच हल्के लड़ाकू जहाज तेजस अते HTT-40 भारतीय हवाई फौज नू सौंपे। भारतीय जनता पार्टी ने पठानकोट तो सूबा पदरी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दी शुरुआत कीती। पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने यात्रा नूं रवाना कीता। पंजाब दे राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ विच भारत टैक्सी दी शुरुआत कीती। चोन कमिशन ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी दे विरोधी धड़िया नूं वख-वख नाम अते चोन निशान अलाट कीते ने। पंजाब सरकार वालों सरकारी कर्मचारियों अते पेंशनरां लई महंगाई भत्ते विच 8% वाधा मंजूर। अमृतसर पुलिस के सहायक सब इंस्पैक्टर हरजीत सिंह की अणपछाते व्यक्तियों वालों गोली मार के हत्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO अधीन लाजमी कवरेज लई तनखाह की सीमा 15,000 रुपए तो वधा के 25,000 रुपए प्रति महीना करन दी तजवीज़ नूं मंजूरी दे दित्ती है। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड PSPCL दे नव नियुक्त चेयरमैन गुरकीरत किरपाल सिंह ने कामकाज की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को घरेलू और व्यापारक बिजली खपतकारों को निर्विघन और भरोसेयोग बिजली सप्लाई मुहैया करवाने को मुख्य तरजीह देने लई कहा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर अते शॉटपुट खिडारी तजिंदर पाल सिंह तूर अज तो जापान विच शुरू हो रही एशियाई खेडा दे उद्घाटनी समारोह विच भारत दे झंडा बरदार होणगे। ए सी हुण तक दियां मुख खबरां।
2: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण पेशे प्रोग्राम सोहनी सवेर। सोहनी सवेर प्रोग्राम सुनने वाले की खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते अदाब। आप जी का बहुत बहुत इस्तकबाल ते जी आया नू ते हो जाओ तैयार मेरे नाल अज दा ए मनोरंजन भरिया जानकारियां भरिया ठीक 8 तक का सफर तय करन दे लई। दोस्तों अज दे दिन की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत

सब मुटियारा चलन पक्षियां बिंदतियां नारा आई न बिजली हाली वेले दे मैनू मखमली दी पक्षी घुंघरुआं।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल दोस्तों, जदों असीं इतिहास के पन्नियां नूं फरोलिया ना, एक होर खास शख्सियत दे बारे

काले रंग दा पराडा मेरे सज्जना ले आंदा काले रंग दा पराडा मेरे सज्जना ले आंदा नी मैं चुम चुम रखदी फिरां।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
3: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंटर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
4: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
0: चलते फिरते खबर

0: से जुड़े रहिए एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्यश सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
3: The government is supporting the sector through technology transfers.
4: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
2: गैलेक्सी आई के CEO सूर्यश सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
4: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ

0: अमेरिका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
2: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द है, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला 2 उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। 2 न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान 2 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26

आओ हुण अज दे प्रोग्राम दे अखीर दे विच सुनदे आं किस्मत टू फिल्म दे विचों लिया एमी बेरक रोमी ते बी प्राक्तियां आवाज़ां दे विच गाया अज दे इस प्रोग्राम दा आखरी गीत।

जमाने की बंदिशों से घबराना कैसा, हर मोड़ पर नया रंग दिखाना कैसा। यहाँ हर शख्स बदलता है मौसम की तरह, फिर इस दुनिया के बदलते का रोना कैसा। दोस्तों जेकर गल करिए जमाने दे रंग सचमुच बहुत अजीब ते बेमिसाल हुंदे ने, जो समय दे नाल नाल लगातार बदलते रहते ने। कदे इह जमाना सानू खुशियां दी चमकदार रोशनी अते उम्मीदां दे नाल भर जांदा है, ते कदे मुश्किलां ते चुनौतियां दा गूढ़ा रंग दिखाउंदा है। इस बदलती दुनिया दे विच जिथे एक पासे नवी पीढ़ी का जोश, आधुनिकता अते मैट्रो वर्गी तेज रफ्तार जिंदगी दा रंग है, उत्थे ही दूजे पासे रिश्तियां दी मिठास, मुहब्बत दी दीवानगी अते पुरानियां यादां दा एक सदाबहार रंग भी शामिल है। लोकां दे अंदाज, सोच अते रीति रिवाज इसे जमाने दे वख-वख रूपां नूं बयान करदे ने। इसे लई तां किसे शायर ने बहुत खूब लिखिया है, जमाने की बंदिशों से घबराना कैसा, हर मोड़ पर नए रंग दिखाना कैसा। यहाँ हर शख्स बदलता है मौसम की तरह, फिर इस दुनिया के बदलते रंगों पर रोना कैसा। आओ दुनिया के इन्हां वख-वख अनुभवां अते हजारां रंगां नूं महसूस करदे हां साडे अगले खूबसूरत गीत नाल।

साफ सुथरा चौगिरदा किनू चंगा नहीं लगता। साफ वातावरण स्वच्छ वातावरण का मायने है साफ सुथरा आले दुआले, साफ पानी, शुद्ध हवा ते हरियाली होवे। स्वच्छ वातावरण स्वच्छ चौगिरदा बहुत जरूरी है। इस विच हर एक

0: अवेयरनेस वाली चीजें जिहड़ियां आ वो सोशल मीडिया के थ्रू चाहे वह यूट्यूब से वीडियो बन के जाए चाहे वह इंस्टाग्राम से रील बन के जाए चाहे वह फेसबुक के उत्ते पोस्ट बना के भेजिए असी वो ना इंपैक्ट जरूर पैंदा है। यह है कि बार बार बार बार करन दे उत्ते इंपैक्ट आएगा, जो असी एक बार रील स्क्रोल करके कट दिती तो वह इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वह जिहड़ा सोशल मीडिया जिहड़ा वह काफ़ी इंपैक्टफुल हो सकता है।
1: ते दर्शी जे हर नागरिक अज तो सिर्फ एक वातावरण पक्षी आदत अपनाना चाहे
2: चंगी आदत और फिर एक तो जो शुरू करांगे फिर दूजी आदत हो गए। दुनिया दो तरह के व्यक्ति होंगे, एक पोल्यूटर एक नॉन पोल्यूटर। मैं सोचे भी मैं की बनना, वो अपने आप आदत सुधार दी। फंडामेंटल ड्यूटी दे विच भी लिखा है कंजर्व इनवायरमेंट है, तो माई रिस्पोंसिबिलिटी जो असीं गल करांगे तो मैनूं लगदा अपने आप साडे समझ आएगी और वो ठीक पासे असीं तुरांगे।
0: जब तक असीं खुद रिस्पोंसिबिलिटी नहीं लैंदे, चाहे वह पौधे लाउण लई पेड़ां दी संभाल लई आ पानी के दोहन लई है कि असी पानी वेस्ट नहीं करना, जे साडे घर कोई लीकेज है उहनूं तुरंत ठीक करवाउणा, जे टंकी चल रही पानी बह रहा उहनूं रोकना, या साडे जिहड़ा कोशिश इह करनी कि असी जिथे इंजन जिहड़ा आई मीन गड्डी जिहड़ी आ नहीं लिजाण दी लोड़, पैदल जाणा जा सकदे आ साइकिल ते जा सकदे उत्थे उत्थे जाइए तां कि असी अपना एयर पोल्यूशन भी जिहड़ा आ उह कंट्रोल कर सकीए।
1: यानी कि स्वच्छ वातावरण साडी सारिआं दी जिम्मेवारी
2: है, अपनी इंडिविजुअल दी
1: भी बनदी है। स्वदेश पाल जी रोहित सिद्धू जी जानकारी देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी,
2: श्रोतियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।

0: आप अपने केस से संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध है, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस, एनी टाइम, एनीवेयर।
1: तो अब एनवायरमेंटल जस्टिस,
2: दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मोबाइल एप्लीकेशन एंड द plenary session is packed with the delegates and domain experts and legal luminaries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
3: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहां पर मौजूद हैं।
2: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
4: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यहाँ हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है। मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी

कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है और मैं हर भारतवासी से कहूंगा आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50

10 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब, जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब्स घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने है। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, यह आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है। और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना। 2014 से पहले के साल में भारत में 3,000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3,000। वही पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इसे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब

करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे हैं। 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम, आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की

0: भी करीब 3000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक हैं, इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That, ladies and gentlemen,
2: Honorable Prime Minister delivered the inaugural address at the Future of Environment and Climate Dynamics Conference organized by the National Green Tribunal here at the plenary session of Vigyan Bhavan. And now the Honorable Prime Minister is departing from the plenary hall. He's shaking hands with the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, and the Chairperson of the NGT, Justice Prakash Srivastava, and the Chief Justice of India, Justice Shri Suryakant, and the Attorney General for India, Shri R. Venkatramani. And the dignitaries have now departed from the plenary hall of Vigyan Bhavan. And Kamal, the Prime Minister, in very unequivocal terms, mentioned about India's commitment, deep commitment to nature and environment since the dawn of civilization. The Prime Minister complimented the NTG for organizing this timely conference, and he said that carbon emission is wrongly blamed on developed countries, especially of the global south. The historical truth is that the Honorable Prime Minister mentioned that per person emission in India is below 50% of the global average. The developed countries have a per person emission that is

0: than 6 times that of India. The Prime Minister mentioned that our traditions and strengths are being shared with the world today. At the Conference of Parties 21 in Paris, the Prime Minister mentioned that India mentioned about convenient action and conformity for change. The Prime Minister mentioned the initiatives of India, such as the One Sun, One World, One Grid, the International Solar Alliance, the CDRI, the Global Biofuel Alliance, the Big Cat Alliance, and Mission Lifestyle for Environment. India's ancient knowledge and its deep commitment to environment is well known. Today, India is a key player in the world of renewable energy. In the last 12 years, solar energy increased from just 2 gigawatts to more than 160 gigawatts now. Through the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, more than 50 lakh houses have solar rooftop panels now, and 80,000 rupees per house has been given as financial help. Through the Kusum Yojana, 30 lakh solar pumps are now functional. The One Nation, One Grid has been completed, and with the LED bulbs, the question of environment pollution has been taken care of. 20 crore tons of carbon emission have been saved. Wind energy, nuclear energy are now open to private players. Non-fossil fuel capacity has increased by 4 times. India is now committed to coal gasification. India is committed to the welfare of mankind and will be a responsible and sustainable nation, ensuring the future of our civilization, said the Honorable Prime Minister of India.
1: कौशिक, वैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती तो बड़ी जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नीतियों, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी के माध्यम से हम इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और भारत ने इस दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा भी दिए हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। चलते चलते हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल 20 सितंबर 2026 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। और अब अपने तकनीकी सहयोगों कमल सिंह, सुमित कटियार, ओब इंचार्ज विवेक तोमर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार के साथ मैं यानी कि कमल किशोर बड़ाइक और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए वापस आपको आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार।
2: हुण तुसी सुन रहे सी वातावरण ते जलवायु दी गतिशीलता दा भविख विषय ते होण वाली कौमांतरी कॉन्फ्रेंस दी शुरुआती समारोह दा सिद्धा प्रसारण साडे दिल्ली केंद्र तों। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 11:30 ते 48 सैकेंड हो चुके ने। पेश करदे आं प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी बस कुछी पलांच।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: जापान दे खेड मैदाना विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ए सब जानण लई सुनो जापान च हो रहीयां एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स दे FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स दे। ये दे नाल

जी असीं तां चाहुंदे हां कि सारे जणे जवानियां मानण, है ना, हर कोई नौजवान रहे। और असीं इह वी जाणदे हां कि भई एज इज जस्ट अ नंबर, कि कहिंदे ने कि उमर सिर्फ एक नंबर ही हुंदी है। अगर तुसी हमेशा अपने सोच दे विच जवान होना तो तुसी 80-90 साल दी उम्र दे विच भी जवान बने रह सकते हो। असी देख रहे हां कि अजकल भी 70-77 साल दे जिहड़े नौजवान ने दौड़ां दे विच हिस्सा लै रहे ने और सारिआं नूं पिछे पछाड़ रहे ने। तो इस करके बई अपने आप नूं कदी बजुर्ग नहीं समझना, अपनी सोच नूं हमेशा जवान रखना है, शरीर दी तंदरुस्ती वल ध्यान देना है, तां फिर बुढ़ापा साडे नेड़े भी नहीं आ सकदा। आओ फिर अगले दोस्तां नूं शामिल करदे हां इसी खुशी दे विच। जिला मुरादाबाद ग्राउंड दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिक ते बलबीर सिंह। अवतार सिंह पन्नू विलेज मठोला डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो चौंक बतिया।

राजू, दीपू, शीतल, शारदा, विवान, गोपाल, विलेज मक्खनपुर, बिशन जम्मू एंड कश्मीर तों, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौंक गोराया जलंधर तों, योगनगर बुढलांडा पंजाब तो प्रेमलता मेहता, नरेंद्र मेहता, सुनीता मेहता, हनी मेहता ते सिमरन मेहता। आखिरी मैसेज शामिल करन रहे हैं जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही मेराज, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो, ते जांदे जांदे बब्बू मान की आवाज़ दे विच दो लाइना सुन लैने हैं।

0: हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम थमक जलंधर पैंदी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 12 बज रहे ने। हुण तो कुछ ही पलां दे विच तुसी सुनोगे हिंदी समाचार साडे दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000

0: हजार युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से अस आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले दोपहर दे 12:05 हो चुके ने। हुन पेश प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: दर्शकों खबरदार, जे ब्रेकिंग न्यूज बनन तो बचना है तो पैसे भेजते समय नाम अते रकम हमेशा दोबारा चेक करो।
1: आरबीआई कहता है किसे नु भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान नाल।
2: हाँ जी, एक खूबसूरत गीत असी सब ने मिलके सुन लिया
3: और बिल्कुल देखो इस गीत ने भी सानू सुनेहा दिता है कि

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: सुरिंदर कौर दे गाए हुए इस खूबसूरत गीत नूं सुन के मन खुश हो गया। हुण असीं अगली चिट्ठी वल वधदे हां, जो कि लिखी है गिदड़बाहा तों मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल, बेबी हनीसा अते बेबी कैरवी ते नाल ही फरीदकोट तों लिखते हन सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल अते गुरलीन।
4: और गगन, मेरे को ये खत जड़ा आया है बाजवा कलोनी पटियाला तो सतरोहन, कृष्ण कुमार, रवि कुमार, विशाल, आलिया, दिमानशी, पूनम, रीनू ते पार्वती हुना दा। चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, राजस्थान जिला हनुमानगढ़, नहर किनारे ढाणी फतेह वाली तो आए ने जी, राम सिंह रपाल ते उन्हां दा पूरा परिवार, नाल दे नाल कमल सुरजीत सिंह सरसुआ तो, सहजदीप सिंह ते इन्हां दे बहुत सारे दोस्त मित्र भी ने, पिंड जंडवाला चढ़त सिंह तो, राकेश, नरेश, जगदीश, अनिकेत, अनु, अमन, सुनेहा, सुमन, ममता ते सरोज रानी, सब्जी मंडी समाणा तो शशिपाल कटारिया, मनीष, भवी, नेहा, रेनू, सरोज, गीता ते सोनिया कटारिया। ये सारे सुनना चाहते ने जी हरभजन मान की आवाज़ से विच गीत ते सुना दिए
3: जी।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
2: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा।

0: पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैर कानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 1:05 होए ने। आ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। दोपहर 1:15 ते प्रोग्राम पेश कीता जाएगा फौजी वीरां लई। दोपहर 2:03 ते रंगली धरती प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे निर्मल सिंह निम्मा दे गाए लोक गीत। शाम 4:02 ते प्रोग्राम प्रसारित करांगे खेड संसार। शाम 4:30 तुसी सरवन करोगे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सदा प्रसारण। शाम 5:30 सरवन करोगे रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम 6:30 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश किया जाएगा किसान वाणी। शाम 7:00 तुसी सुनोगे पंजाबी गीत। 7:10 ते दिल्ली तो प्रोग्राम प्रसारित होएगा जन सेवा से देश सेवा। शाम 7:45 ते प्रोग्राम साहित्य सुधा तहत वार्ता पेश की जाएगी बोलचाल दी भाषा विच संस्कृत दी वरतों। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मधुबाला। शाम 7:55 ते स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश किया जाएगा लम्हे। रात 8:05 ते तुसी सुनोगे जिंदगी हसीन है। ते रात 8:15 सुर सरिता प्रोग्राम तहत तुसी सरवन करोगे मसीही भजन तरसेम मसीह ते साथिया पासो। रात 9:15 प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट ते चित्र भारती 9:30 साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 10:00 वीवियां एशियन खेडा दियां मुख झलकियां तुसी सुन सकोगे साडे दिल्ली केंद्र तो 10:00। 10:20 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे पंडित हरविंदर कुमार शर्मा दा सितार ते वजाया राग तिलंग ते धुन मिश्र पहाड़ी। सो ऐसी अज रात तक दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। इस तो इलावा हिंदी, पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10:00 तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से। FM रेन

जय हिंद फौजी वीरो, पेश है तुहाडे मनोरंजन लिए कुछ खूबसूरत हिंदी फिल्मी गीत। ते इस प्रोग्राम दा पहला गीत असी सुनवान जा रहे हैं फिल्म नागिन तो, आवाजा लता मंगेशकर ते महेंद्र कपूर दियां। गीत दे बोल वर्मा मलिक दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स।
3: वही मनु, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। ते फौजी वीरो, अगला गीत आ रहा थोड़े लई फिल्म प्यासा सावन तो। आवाजा किशोर कुमार ते आशा भोसले दियां। गीत दे बोल संतोष आनंद दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: ਵਈ ਮਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
1: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
3: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: जापान के खेड मैदान हुण गूंजेगा एशिया का दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् चैनल्स से FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स से ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
4: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे की बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय का ध्यान रखण।
5: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम है फौजी वीरां लई। ते फौजी वीरो, अगला गीत तुसी सुनोगे फिल्म अंजाना तो मोहम्मद रफी दी आवाज़ च। गीत बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

नाजुक तू है संभल ओए मोच न आ जाए मारना है देखो कर तेरा पैर पिघल जाए है कितनी नाजुक तू है संभल ओए मोच न आ जाए।

मेरी चलो ले जा छल्ला निशानी, मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, चार दिनों की है जिंदगानी, तो मेरी रानी ले जा।

पत्थरों से सर टकराऊं मैं दीवाना, जल जाऊं बनके क्षमा का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हम।

0: ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों दौरान वातावरण नाल संबंधित सारे खेत्रों में बेमिसाल तरक्की की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत होर देशों के सहयोग नाल काम कर रहा है।
0: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नवीन युग ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है, वातावरण संभाल विच अहम भूमिका निभाई है।
0: हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्य कांत ने इस मौके बोलदिया कहा कि धरती संभाल का विचार देश विच वातावरण ट्रिब्यूनल नेमबद्ध विधियां अते पालना ढांचे के होंद विच आउण तों पहला मौजूद सी। उन्होंने जंगलों, झीलों, नदियां अते जंगली जीवों समेत कुदरती वातावरण की रक्षा अते सुधार करन अते जीवों प्रति हमदर्दी रखण के हरेक नागरिक के बुनियादी फर्ज की महत्ता नूं रेखांकित किया। वातावरण, जंगलात ते जलवायु तब्दीली मंत्री भुपिंदर यादव ने कहा कि भारत का वातावरण प्रति दृष्टिकोण इसकी प्राचीन विचारधारा विच डूंघाई नाल जुड़िया होया है, जो धरती नूं संपत्ति वजों नहीं सगों एक सांझी विरासत ते पवित्र खजाना मानती है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सटेंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, ते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तर NSO वालों कल जारी किए गए जिला वार अंकड़े अनुसार भारत में कामकाजी औरतों की हिस्सेदारी में तेजी से वाधा होया है। देश के 57.8% जिलों में महिला किरत शक्ति हिस्सेदारी दर 40% या इस तो वध दर्ज की गई। सर्वेक्षण में शामिल 100 जिलों में गुजरात का सूरत जिला किरत शक्ति में हिस्सेदारी की सब तो वध दर और कामियां ते आबादी के अनुपात के मामले में देश भर में मोहरी है। सर्वेक्षण च बिहार के दरभंगा जिले च किरत शक्ति विच भागीदारी के अंकड़े सब तो घट दर्ज किए गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूजे पड़ाव विच देहाती विकास मंत्रालय अगले महीने तो बहुते राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों विच लगभग 34,000 देहाती नौजवानों नूं सिखलाई देनी शुरू करेगा। पहले पड़ाव विच हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार ते तमिलनाडु समेत 14 राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों विच सिखलाई बैच शुरू करन दीआं तैयारियां दी समीक्षा की गई। मंत्रालय ने दस्सिया कि अगले साल 31 दिसंबर तक 357,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 11 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੰਬੂ, ਹਾਈਜੀਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2:30 ਪਾਲੋਮਾ ਮਿਜ਼ੂਹੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਤਮਗਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਬਾਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਖਿਡਾਰੀ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 37 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕੀਓ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨੇ 1900

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वीं रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्ब से भी कम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फॉरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अक़वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। माहिरीन ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। मशहूर गुलकार, कंपोजर और सकाफती शख्सियत जुबिन गर्ग को उनकी पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है। और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नए मुकर्रर किए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज़ादाना तिजारती मुआहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मुआहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कानात तश्कील देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के टैलेंट और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
0: इस मौके पर अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मम्लकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए रोजगार की तश्कील और तकर्रुरी के जायजे से जाहिर है कि सरकारी तकर्रुरियों में काबिले जिक्र इजाफा हुआ है। साथ ही इस अमल में ज्यादा शफाफियत आई है। उन्होंने कहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के जरिए एनडीए हुकूमत के 10 साल के दौरान तकरीबन 10,96,000 तकर्रुर किए गए हैं, जबकि यूपीए हुकूमत के दौरान 7,22,000 तकर्रुर हुए थे। 20वां रोजगार मेला मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया गया है। नौ मुकर्रर उम्मीदवार खजाना, रेलवेज

0: किया है। वजीर आजम ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने माहौलियात से मुताल्लिक हर शोबे में गैर मामूली पेशरफ्त की है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैनुल अक्वामी शमशी इत्तेहाद, हयातियाती ईंधन के आलमी इत्तेहाद, शेरों की नस्ल से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद और मिशन लाइफ जैसी पहल के जरिए माहौलियाती तहफ्फुज़ के नए पैमाने कायम कर रहा है और बाकी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा है कि भारत की असल तवज्जो काबिले तजदीद तवानाई पर है, जो माहौलियाती तहफ्फुज़ में अहम रोल अदा करती है। तकरीब से खिताब करते हुए भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुर्रे अर्ज़ को बचाने का नज़रिया मुल्क में माहौलियाती ट्रिब्यूनल्स, इंजबाती मेकानिज़म और तामीली फ्रेमवर्क के उभरने से पहले मौजूद है। माहौलियाती तहफ्फुज़ से मुतालिक ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए हो रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौलियाती माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के जजेस इकट्ठा हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। देही तरक्की की वजारत अगले महीने ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत तकरीबन 34,000 देही नौजवानों को तरबियत फराहम करेगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु समेत 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तरबियती बैचेस के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजारत ने कहा है कि आइंदा साल 31 दिसंबर तक 3,57,000 से ज्यादा देही नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका ये सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत अग्निपथ स्कीम का जायजा पेश किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने नौजवानों को मुल्क की खिदमत का मौका फराहम करने के लिए साल 2022 में अग्निपथ स्कीम का आगाज किया। स्कीम के तहत नौजवानों को, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, मुसल्ला अफवाज में शामिल किया जाता है। अग्निवीर 4 साल तक खिदमत अंजाम देते हैं। इस दौरान उन्हें फौजी तरबियत से लैस किया जाता है और नज्म व जब्त और मुख्तलिफ महारतों से रूशनास कराया जाता है। उत्तराखंड की मजबूत फौजी रिवायत रही है, जहां नौजवान मुसल्ला अफवाज में अहम रोल अदा कर रहे हैं। रियासत के नौजवान बड़ी तादाद में अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती हो रहे हैं। इस साल फरवरी और मार्च के महीने में चंपावत के बनबासा में अग्निवीर भर्तियों में उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। फौज में 4 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद हर बैच के 25% अग्निवीरों को तयशुदा तरीक़ेकार के जरिए मुसल्ला अफवाज में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया जाता है। देहरादून से संतोष थापलियाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है, जिनमें अद्वियात, फोरेंसिक सप्लाईज, खेमे, सफाई सुथराई के किट्स, सोने के लिए बिस्तर और दीगर जरूरी साजो सामान शामिल हैं। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुजीनियों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। अक्वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी हुक्काम से अपील की है कि वह मुल्क बदर करने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद को जुल्म व जबर, तशद्दुद या दीगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे खतरात का सामना है। आज मायनाज गुलोकार, मौसीकार और सकाफती अहमियत के हामिल जुबीन गर्ग की पहली बरसी के मौके पर उनको याद किया जा रहा है। लाखों लोग जुबीन गर्ग की मौसीकी के दिलदादा हैं। आज रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। 20वें एशियन गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज जापान के आइची नागोया के पालोमा मिजोहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 PM मुनाकिद होगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादाना तजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाजे किया

0: भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी जलंधर ते जारी है प्रोग्राम फौजी वीरां लई। ते फौजी वीरों एक बार फिर तो आप सब दा बहुत बहुत स्वागत तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। ते हुण इस प्रोग्राम दा गीत असी अगला पेश करन जा रहे हैं फिल्म हिम्मत वाला तो आवाज़ां लता मंगेशकर किशोर कुमार ते साथियां दियां। गीत दे बोल इंदीवर दे ते संगीत भप्पी लहरी दा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता

0: समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जाने की था।
1: अच्छा, फिर एक गल का जवाब दे, HIV किमें फैलदा है?
0: HIV
1: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किमें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल, संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल, संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल, संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
3: ਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਫਿਲਮ ਹਿਨਾ ਤੋਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित

0: भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी कार्बन एमिशन पर रोकथाम हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों झीलों नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: India has launched भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित

0: करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की है। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए

0: द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 2:30 हो चुके ने। वेला ए प्रोग्राम रंगली धरती दा सुनदे आ प्रोग्राम बस कुछ ही पलां च।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
3: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 दी बजाए रात 8:30 प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। आज दे इस प्रोग्राम दे लोक गायक ने निर्मल सिंह निम्मा।

राठी, ओम प्रकाश राठी, शगन लाल राठी पोत्री, हनु राठी, लवकुश वर्मा, अमनदीप गौड, कंचन विराट, विक्रम विराट, विरक है जी, विरक लिखिया जाए, विरक विराट कुछ लिखिया जी, गलती होवे तो माफ़ करना, कुलदीप ढिंगड़ा, पिंड कड़ियाणा, बाबू लाभ सिंह, मैने वाला, छत्रपाल सिंह खंगाड़ा, गुरमीज सिंह विरक, ते पिंड कमाल वाला तो रणजीत कौर पट्टी, बोर्ड सिंह पट्टी, काका पट्टी, गीत कोई भी कहिंदे सुना दो जी, जरूर सुनावांगे तुहाडे लई गीत जी। पिंड नुकेरियां नेड़े मंडी रोड़ा वाली तो कश्मीर सिंह करनावल, सुखा करनावल, गुर सुखचरण सिंह बराड़, टाणी नत्था सिंह, चढ़तवीर बराड़, अमानत बराड़ लिखिया जी, उत्ते स्टैंप लगी हुई है, ते अनमोल सहजप्रीत, रहमत खुशप्रीत राणा हलवाई पिंड ते चक पक्षी तो जी, इन्होंने भी गाने की कोई भी गाने की फरमाइश की हुई है जी। अगला खत साढ़े को है जी, पटेल नगर मलोट पंजाब तो रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया, आओ इन्ह सारे की फरमाइश तो सुनते हाँ फिरोज खान की आवाज़ एक गीत।

0: लो जी, इसे गीत दे नाल ही अज दा प्रोग्राम इत्थे समाप्त करते हैं। तो प्रोग्राम नूं खत्म करन दी आग्या दिओ। बहुत सारे गीतां ते संगीतां गिद्धियां दे नाल इह प्रोग्राम अज कीता सारा, ते आशा करते हैं कि तुहानूं इह गीत प्रोग्राम पसंद आया होएगा। इस दे नाल ही इह प्रोग्राम खत्म हुंदा है, ते शोभा गई नूं दिओ इजाजत, ते अगले प्रोग्राम दा इंतज़ार करो।
1: तरंग कार्यक्रम में ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: हुण इस मीटर ते साडी अज दी इस सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सभा दी शुरुआत दे विच पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 20वें रोजगार मेले दौरान वख-वख सरकारी अदारियां विच नवे नियुक्त हुए नौजवानों नूं 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों विच करीब 40 देशों नाल मुक्त व्यापार समझौते किए ने, जो देश के नौजवानों लई मौकियां दे नवे राह खोल रहे ने। साबका केंद्रीय मंत्री अते भाजपा नेता रवनीत बिट्टू नूं अज लुधियाणा विच मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे प्रोग्राम दे स्थान नेड़े प्रदर्शन करन लई हिरासत विच लै लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज 14 न्यायिक

डर तेरी मेहर अते प्रीत सदका ही मैं तेरे नाल डूंगी सांझ स्थापित कर सकिया हां। तू मेरा आसरा, तू ही मेरा माण है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काड़ा जियो। इस शब्द गायन कीता है बीबी कविता दमन अते शीला शर्मा होरां।

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता। इस शब्द गायन की तसी बीबी कविता दमन अते शीला शर्मा होरा ने। राग मारू महला पंजवां सिरलेख वाली रचना च पंचम गुरदेव प्रभु नू माता पिता बयान करदे ने ते फरमांदे ने कि उसने ही मैनू लायक समझदे हुए सोजी बख्श के नाम तन दी पूंजी सौंपी है ते इस सौदे लायक समझया है। मेरे ते कृपा करके मैनू सतगुर दा पाईवाल बना दिता है ते सर्ब सुखां दी दात दे लायक बना दिता है। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। इस पौड़ी दा गायन कीता है प्रोफेसर दर्शन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। इस पौड़ी का गायन किया प्रोफेसर दर्शन सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दलेर सिंह जोश।
1: यह शब्द राग मारू दी वार विच गुरु अर्जन साहब जी का उचारण किया होया है जी। इस पौड़ी के मुढ़ले पदे विच गुरु साहब जी पारब्रह्म परमेश्वर के गुण माता पिता के गुणा की तरह वर्णन करते हैं। बिल्कुल उसे तरह ही जिवें माता पिता अपने बच्चों का हर वक्त ध्यान रखते हैं। बच्चा छोटा है, इसने रड़ना शुरू कर दिता है, सामने अग बलदी है, वेख के वार वार अग वाले पासे जाता है। माता पिता उसनू पकड़ लेंदे हैं क्योंकि बच्चा अनजाण है, उसनू इस गल का ज्ञान नहीं। वेड़े विच पानी का टोआ है, बच्चा पानी वाले पासे रड़ के जाता है, माता पिता वेखदे सार बच्चे नू चुक लेंदे हैं। इवें ही परमात्मा रूपी पिता भी अपने सेवक रूपी बच्चों माड़े कर्मा तो बचा लेंदे हैं। जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई योगा सिंह जी नू विकारी कर्मा तो हथ दे के रख लिया। इस पौड़ी के पहले हिस्से विच फरमान करते हैं, हर जी माता, हर जी पिता, हर जो प्रतपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। माझ राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी इस प्रथाए अंग 103 उत्ते वर्णन करते हैं। तू मेरा पिता, तू है मेरा।

दाता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई ता पाओ केहा काड़ा जीव। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओर तू है मेरा माणा, तुझबन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जीव। गल इतनी कु है कि असि वाहगुरु जी नाल केड़ा रिश्ता बना रहे हां। सहज ए सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक, मेरा प्यारा पिता वाहिगुरु अड़ोल अवस्था टिका के जीवन दी खेड खिड़ा रहा है। इस गल्लों रता पर भी आलस नहीं करदा। असी भावें उसका सिमरन करना भुल जाइए पर वह नहीं भुलदा। जिवें बाणी दा फरमान है, भुलण अंदर सब को आ भुल गुरु करतार, अवगुण को ना चितारदा गल से तीन लायक। मेरी किसी भी भुल या गलती नूं चिताउंदा नहीं, सगों अपनी प्यारी गलवकड़े विच लै लैंदा है। भगत कबीर जी भी इस गल की गवाही भरते हैं कि बच्चा कितनिया भी भुलां करे, मां प्यो बच्चे दीआं भुलां नूं जिताउंदे नहीं, सगों प्यार नाल समझा दिंदे हन। अपनी बाणी विच किन्ना सोहना लिखिया है, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न रख सतेते, राम अय्या हम बालक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा रहाओ। जीवत क्रोप करे करताया, तापी चीत न रख समाया, चिंत पवन मन भरियो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। बच्चा वाहगुरु पिता दे चरणा विच अरदास करदा है, बड़े प्यार नाल बेनती करदा है। की करदा है? कहिंदे ने देहे बिमल मत सदा सरीरा, ऐ मेरे मालक मैनूं शुभ मत प्रदान कर। देहे बिमल मत सदा सरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, जिसका सदका तेरा ये बच्चा तेरे सोहने गुण गावे। ते फिर की करे, गुरु अर्जन देव जी राग सोठ विच एक शब्द विच जिक्र करदे हन, जैसा बालक पाए सुभाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुत पिता गल लावै, पिछले औगण बख्श लए प्रभ, आगै मार्ग पावै। मूह मंगा सोई देवंदा, हर पिता सुखदायक, मैं पिता समान वाहगुरु जी कोलों जो कुछ भी मंगदा हाँ, मेरा सुख स्वरूप पिता ओही ओही दे दिंदा है। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यौन, इस सौदे लायक, उस प्रभु पिता ने अपने नाल जान पछाण लई नाम तन दी पूंजी दे दित्ती है, मैनू ये सौदा विहाजन दे लायक बना दिता है, अते इउं समझा दिता है, वणद करो वणदा रहो, वखर लिहो संभाल, तैसी वस्त विसाई है जैसी निभ है नाल, भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो शव देखै पति आए। सुखमनी साहिब विच गुरु अर्जन साहिब जी फरमान करदे हन, सलोक साथ न चलै बिन भजन, बिख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार। पर ए दात मनुख दे हथ विच नहीं, जिस मालक दे वस विच है ए कुछ है, ਉਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਨੀ, ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਸ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹਮਲੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਣੰਜੈ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਇਹ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹਾ ਲਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਹਰ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਲਾਇਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪੁਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਸੋਈ ਦੇਵਨ ਦਾ, ਹਰ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਇਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ

बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। इस शब्द गायन की तसीपाई गुरमेल सिंह ते उन्होंने रागी जत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटी बनती है।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी ए कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी

0: ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवाल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 3 बड़े पद जीते। एबीवीपी के यश डबास अध्यक्ष चुने गए, जबकि रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਬੀਡਮਰੇਟ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
2: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

शाम 6:30 बजे सुनोगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसान वाणी। शाम 7:10 से साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे विशेष प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा। सत्त बज के 45 मिनट प्रोग्राम साहित्य सुधा विच डॉक्टर मधुबाला की वार्ता सुनोगे बोलचाल की भाषा विच संस्कृत की वरतों। सत्त बज के 55 मिनट सुनोगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

रात 9:30 बजे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे प्रोग्राम चित्र भारती। रात 10 बजे वीवीआ एशियन खेडा दियां मुख झलकियां सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 10:20 ते अज प्रोग्राम शास्त्रीय संगीत दे विच सितार वादन सुनोगे। कलाकार होंगे पंडित हरविंदर कुमार शर्मा। राग तिलंग सुनोगे ते धुन होएगी मिश्र पहाड़ी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया

नाइट्रोजन पौद्यां नूं तुरंत उपलब्ध हो जांदा है अते दाने भरन दे समें पत्तियां दी सरगर्मी अते सेहतमंद विकास विच सहायता करदा है। पोटाशियम नूं अक्सर गुणवत्ता वाला खुराकी तत् कहा जांदा है। इह झोने दे पौद्यां विच कई महत्वपूर्ण शरीरक क्रियावां नूं नियंत्रित करदा है। पोटाशियम दी उचित मात्रा फसल नूं वातावरणक तणा जिवें कि वध तापमान अते थोड़े समें लई पानी दी घाट सहण विच वी मदद करदी है। इस दे छिड़का दा टुकवा समा तुहानू दसते हाँ। झोने विच फोक कटाउण लई पोटाशियम नाइट्रेट दे छिड़का दा सब तो टुकवा समा उदों हुंदा है जदों झोना गोभ विच होवे। इस अवस्था विच बल्ली झंडा पत्ते दी म्यान दे अंदर विकसित हो चुकी हुंदी है अते बाहर निकलण लई तैयार हुंदी है। इह फसल दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा है जिसका सीधा संबंध भरे हुए दाणियां दी गिणती अते झाड़ नाल हुंदा है। इस समय खुराकी तत्तां दी घाट कारण दाणियां दा विकास अते भराई प्रभावित हो सकती है। फोक विच वाधा हो सकता है, दाणे हल्के रह सकते हैं अते अंत विच फसल दा झाड़ घट सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवस्था उत्ते पत्तियां राही पोटाशियम नाइट्रेट दी पूर्ति करन नाल फसल नूं लोड़ींदे तत् तेजी नाल उपलब्ध करवाए जा सकते सन। पोटाशियम नाइट्रेट दा 1.5% घोल बना के पत्तियां उत्ते छिड़का करन दी सिफारिश कीती जांदी है। इसलिए किसान 3 किलो पोटाशियम नाइट्रेट नूं 200 लीटर पानी विच घोल के 1 एकड़ झोने दी सफल उत्ते एक सार छिड़का करदा है। छिड़का तो पहला ये यकीनी बनाया जावे कि खाद पानी विच पूरी तरह घुल गई होवे तां जो स्प्रे नोजल बंद ना होवे अते खुराकी तत्तां दी इक सार वंड हो सके। छिड़का इस तरह कीता जावे कि फसल दे पत्तियां खास करके उपरले पत्तियां उत्ते घोल दी चंगी कवरेज होवे। सो दोस्तों, इस खेती संदेश तो बाद हुण वेला हो गया है एक गीत दा, ते तुसी इंजॉय करो इस गाने नूं।

0: किसान वीरो, उम्मीद है कि तुहानू ये गीत जरूर पसंद आया होवेगा। ते आओ हुण तुहानू जानकारी दिंदे हां पशुआं विच हेहा समकाली करन दे बारे, जो कि है डॉक्टर नरिंदर सिंह जी वल्लों।
1: सारे ही श्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर नरिंदर सिंह बतौर मुख विज्ञानी गुरु अंगद देव वैटनरी एंड एनीमल साइंस यूनीवर्सिटी विच सेवावां निभा रहा हाँ। मेरी महारत पशु प्रजनन दे विच है। इसे नाल संबंधित विशा हेहा समकालीकरण दे उत्ते अज आपां गलबात करांगे। आपां देखांगे भी हेहा समकालीकरण की हुंदा, इहदे की लाभ ने, कदों करना चाहीदा ते इस दे की फायदे आपां नूं मिलदे हन।

होना चाहिए। पशु ज़्यादा लिसानी होना चाहिए, ना ही बहुता मोटा होना चाहिए हैगा। पशुओं के जड़े आप धातों का चूरा दें है वह तकरीबन 25 से 30 ग्राम देंदे रहना चाहिए है। पशु के सूण तो बाद जोड़े पशु ताज़ा सूए ने उन्होंने जल्दबाजी के हेहा समकालीकरण नहीं करना चाहिए। तकरीबन 45 या 60 दिन तक उन्होंने बच्चेदानी की बणतर जी है अपनी मुढ़ली अवस्था के जानी होंगी हैगी, काफ़ी सारे सफाई का काम होना हों, उस दौरान यदा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जेकर संभव हो डाक्टरी सहूलत है आप हेहा समकालीकरण तो पहला अल्ट्रासाउंड करवा लवेंगे तो रिजल्ट जोड़े है नतीजे होर भी बेहतर हो जाते हैं। हुण आपां गल करते हैं भी हेहा समकालीकरण दीआं किहड़ियां किहड़ियां विधियां ने। बहुत सारिया विधियां ने पर आपां सिर्फ उन्हां दी गल करांगे जिहड़ियां आम तौर पर प्रचलित ने। उन्हां दे विच जिस तरह आपां गल कीती सी भी किहड़े किहड़े हारमोन ने जिहड़े हेहे चक्कर नूं कंट्रोल करदे ने, आपां गल कीती सी प्रोस्टाग्लैंडन दी, आपां गल कीती सी GNRH दी, आपां गल कीती सी प्रोजेस्टरोन दी। इन्हां हारमोनां दा इस्तेमाल करके ही हेहा समकालीकरण किया जाता है। जिवें पहली उदाहरण मैं दे रहा है प्रोस्टाग्लैंडन की, जिसनों PG आखते हैं। PG आम भाषा के बड़ा ही प्रचलित है, किसान भीर इस जानते हैं भली पाती। जिहड़ा प्रोस्टाग्लैंडन है इहदा एक टीका लगाया जा सकता जां दो टीके लगाए जा सकते हैं। जेकर एक टीका लगाने तो साडा जिहड़ा पशु हैगा 3 से 5 दिन के हीट के आ जाना चाहिए। ये सारे पशु नहीं हीट के आते क्योंकि जिहड़े हजे जल्दी CL जिन्हां दे विच छोटा हुंदा जां ज़्यादा पक गया हुंदा वो इस नूं असर नहीं हुंदा उन्हां ते, ते इहदे नाल तकरीबन 50-60% पशु जिहड़े साडे हीट दे विच आ जाणगे। पर AI दे लई नवे दुद्ध करन दे लई हेहे नूं लभणा पएगा, फिर मणाप करवाउणा पएगा जां AI करनी पएगी। फिर आपां गल करदे हां दो इंजैक्शन की, जिहदे विच डबल PG लगाते हैं। डबल PG दे विच असी पहला PG लगाने तो बाद 11वें या 14वें दिन दूसरा PG लगाते हैं। इस तो तकरीबन 2-3 दिन पशु हेहे दीयां निशानियां दिखाता तो उस वेले उहदे विच AI जां कुदरती तौर पर सांड झोटे नाल मिलाप करवाया जा सकता है। उस तो बाद आपां गल करते हैं OSINT प्रोटोकॉल, इसनों GPG प्रोटोकॉल भी कहिंदे ने। आम किसान वीरां दे विच यह 079 प्रोटोकॉल दे नाल बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही मशहूर है, पर इहनूं बड़े सावधानी नाल लगाना पैंदा हैगा। तो इहदे विच 0 डे दे उत्ते GNRH लगदा, 7 डे ते 7वें दिन जाके प्रोस्टाग्लैंडन लगदा, 9वें दिन दुबारा फिर GNRH लगना, 10वें दिन AI जां कुदरती मिलाप करवाया जा सकता है। हुण इस तकनीक नूं होर बेहतर बनाउण दे लई जेकर OSINT दे अगे आपां PG लगा दिंदे आ तो उसनूं PRESINT कहिंदे ने। 2 दिन पहलां जे प्रोस्टाग्लैंडन लगा दईए तां ओह PRESINT OSINT बन जांदा है। तीसरा तरीका जिहड़ा हैगा ओह भी काफ़ी कारागार आ, उहदे विच प्रोजेस्टरोन हारमोन दा नाल इस्तेमाल कीता जांदा हैगा। जिस तरह OSINT प्रोटोकॉल आ, जेकर एक प्रोजेस्टरोन देण वाला यंत्र आपां वजाइना योनी दे विच रख दईए तां उहदे विचों लगातार प्रोजेस्टरोन मिलदा रहिंदा। आपां 7वें दिन उहनूं बाहर कढ़दे आ, प्रोजेस्टरोन एकदम नीचे आउंदा ते पशु जिहड़ा 48 से 72 घंटे दे विच हीट च आ जांदा हैगा। जिस दिन आपां प्रोजेस्टरोन यंत्र बाहर कढ़णा उस तों 24 घंटे पहलां जां उस दे नाल आपां एक टीका प्रोस्टाग्लैंडन दा लगाउंदे हैगियां। इह जिहड़ियां तकनीकां हैगियां इह बड़ियां ही कामयाब तकनीकां हैगियां। होर भी काफ़ी तकनीकां आ, थोड़ी बहुतियां तब्दीलियां करके बनाई गई हैगियां, पर जिस तरह पहला मैं दस्या हैगा भी डाक्टरी जांच दे नाल इह तय करना जरूरी हो जांदा भी किहड़ी विधि दे नाल साडे जिहड़े नतीजे हैगे ने वधिया आणगे, साडे पशु वध गबण रहणगे। हुण तक आपां गल्लबात कीती आ उहदा सिट्टा की आ, जिहड़ा आपां कहिंदे आ सुनेहा की आ। सुनेहा इही आ कि जिहड़ा पशुआं दे विच हेहा लभणा हैगा आ एक एक मुश्किल प्रक्रिया। क्यों मुश्किल आ? क्योंकि हेहा जिहड़ा हैगा शाम नूं रात नूं जां सुबह जल्दी आउंदा हैगा आ, ते जदों पशुआं दी गिणती वध जांदी आ तां होर भी मुश्किल हो जांदा हैगा आ। ते इस तरह आपां जिहड़ा हैगा हेहा समकालीकरण दी विधि अपना के उहनां पशुआं नूं ज़्यादा गबण करवा सकदे आ। जेकर आपां हेहा समकालीकरण अपनावांगे तद ही आपां ज़्यादा तो ज़्यादा पशु अपने गबण करवा सकते हैं, ज़्यादा दुध लै सकते हैं, तो जिहड़ा डेयरी धंधा हैगा आ किता हैगा साडा उहदे तों लाभ कमा सकते हैं। पर एक गल होर इस दे विच मैं नाल जोड़नी चाहवांगा भी ये जिहड़ा हेहा समकाली

0: स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। विकास की मुख्य धारा से दूर रह जाए। प्रधानमंत्री आदि जोर जनजातीय समूहों की आवास, आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कहने प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
2: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है जी। और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत जी। और जिस विशेष बात रखी जनमन या इसमें जो जन कल्याण जी, जी, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहते हैं क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहां पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य साधा अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
1: जी।
2: अब 20 साल उसके रहेंगे। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपकी सेहत है, चाहे वहां की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही है, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
1: जी
2: उसको कर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना है।
1: शुभ, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक

0: परिवर्तन आप देखते हैं, आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
1: सबसे बड़ा इन सारी योजना में जो बदलाव आया है वो ये है, पहले लागू भी किए हैं लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो जब शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नाम निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचने एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला, इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले इसकी पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारी स्कीम में ये जो मॉनिटर आया है ये बहुत है। ना की बस हुई है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं था, और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, उन्हें की एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो था पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे पैसे लगाए जाते थे जिसमें मैंने कहा कि कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है जी। दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में मशीनरी का खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को समझने में और उसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया, सिंपल योजना है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए
0: जी। बहुत अच्छी बात की शुभमय कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर केवी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगी, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं जनधन योजना के अंतर्गत, उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने यानी शुभमय ने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ। इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
2: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे
0: जी जी, जी।
2: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत नीचे जाएगा
0: जी,
2: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की जनधन, चाहे जैन जिसे कहते हैं जनधन आधार चीजों को जोड़ के आपने जी, तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास, और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे अगर आप कभी भी देखें, जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के
0: जी,
2: जो आम नागरिक हैं और सबको उनको एंकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है
0: जी, जी।
2: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा।

0: तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है। अब उसके बाद, अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें यूपीआई क्यूआर कोड का जो इस्तेमाल होने लगा
1: जी
0: जी मैप
1: जी
0: के जरिए
1: जी जी
0: तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए।
1: जी
0: शुरुआत में इसके काफी आलोचना भी आपको याद होगी।
1: अच्छी
0: अच्छा आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता।
1: जी
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास क्यूआर कोड है।
1: जी
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से शुभ है, जो कि आर्थिक विशेष ज्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपीआई को लेकर कुछ चर्चाएं चली है, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है अब।
1: जी
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं होता था।
1: जी
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ है, अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, डीबीटी किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को? यानी काला धन सफेद धन, धन धन है लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा, और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें डीबीटी कैसे कह ले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ? और एक बड़ी अच्छी बात केवी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं। किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
2: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखिए सीएजी का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है। हर साल का सीएजी का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं,
1: जी
2: बड़ा नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडिलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसमें हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा 7 ट्रिलियन हो जाएगा और उस जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपए इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए
1: जी
2: उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जय ट्रिनिटी
1: जी
2: जनधन वाली योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में हर 15 दिन में जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी
2: उस तरह से वो पिक। तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर जो एक बार सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी इस पर भरोसा आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है। जी
1: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, शुभ में कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, बेशक आमदनी के आंकड़ों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गांव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की

0: आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
1: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज बदली है। जी, जी, 40% के आसपास मान के चलिए, 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती खलिहान कुछ

0: विकास की ओर बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह के कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया इस सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच।
1: जी,
0: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर करके लक्ष्य आधा सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारी जैसे बात हो रही थी कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करे। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ाए कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाए, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के लिए काम हो रहा है। ठीक है, कास्ट का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा, वो क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिला के दबाव सब पे है।
1: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गांव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम दिख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की मैं जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनके तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहाँ तक कि इन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्था करना वो मुश्किल था क्योंकि ये एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वे आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाए। इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
1: जी
2: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए।
1: जी,
2: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पर आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज है और शिक्षणीय चीज भी है।
1: जी, श्रोताओं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांव में जो परिवर्तन हुए हैं बुनियादी परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहां जाना कठिन था अब वहां सहजता से आप पहुंच सकते हैं और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
0: अगर स्वस्थ हो गए राष्ट्र तो वो विकास की ओर कार्य करने और उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने पे कार्यान्वयन हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है।
1: जी जी जी,
0: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 70 के ऊपर 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है। और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए सेवा तो की है, लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर गए तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा आभा स्कीम है आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब सम्मिलित करके कर रहे हैं।

0: और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप सरकार को खर्च नहीं है, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बच्चों आप और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दीजिए, कई सारे टाउन टीयर टू सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल है, जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं
1: जी,
0: कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ है। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है, आप अस्पताल पहुंच गया पता चला रिपोर्ट घर से छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में हो और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा है या आप नहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे। तो इस तरह से जो शुरुआत में बात की, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
1: यहाँ पर शुभ आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही है और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
2: देखिए बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आए हैं वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, जितना जितना जिस तरीके का हम अगर हम हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे पीएम आयुष्मान भारत
1: जी,
2: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब ये है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगह में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं उससे ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हम ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे, कि ये स्कीम्स एक जिसे कहते हैं एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है, तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में
1: जी
2: का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इस तरह के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों के आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है, यही है स्कीम्स के जिसे कहते हैं सिग्नेचर, कार्यकर्ता की काम कार्य क्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स की सबसे बड़ा खूबी कि गवर्नमेंट के जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारी स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है, और ये सब बहुत बड़ी जैसे मैं कहूंगा फेस चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है, और इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड
1: जी। यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहां उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
0: देखिए सबसे समस्या जो भी कहिए

0: चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाए
1: जी,
0: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है, एक लक्ष्य साधा है 2047 में जो 100 साल भारत का आजादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होते हैं, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सरकार के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी तो शुरुआत से तो जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा पुरानी बात है, लेकिन उसके आगे और कई सारी चीजें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्या है अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका कैसे, तो कई सारे चीजें हैं। तो वो विकास जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे है, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जैसे है कि लास्ट में जैसे कहें अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं लेकिन अंत में जाके सब उस टेप को
1: जी
0: चाहते हैं, तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछले वर्ग को लेकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है उसके लिए जो है जो सोच बदलने की बात आई थी, जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं वो पहले है,
1: जी जी
0: सिर्फ सोच ही बदलाव,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते हैं चुनौती है, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है, जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचे।
1: बिल्कुल शुभ, प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है, तेल के दाम बढ़े लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं, और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया क्योंकि हम बड़ी विविधता से चतुराई पूर्वक समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इंप्लीमेंट हों और वो साल दर साल इंप्लीमेंट होते रहे, उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
0: मनोज जी आपने जो बात कही बहुत अहम भी है और इस पे देखिए जैसे इससे पहले बाकी बात की सोच बदलने की बात है, और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते हैं, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता, मतलब यह है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, 3-4 चीजें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें और वो घर किस नाम पर जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी घर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते, तो एक ही सोच बदली कि ये कार्य करें।
1: श्रोताओं एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही संपन्न होता है, आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभ मैं आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद मनोज जी।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज

0: ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए। आउन प्रोग्राम साहित्य सदा विच डॉक्टर मधुबाला दी वार्ता सुनदे आं। बोलचाल दी भाषा विच संस्कृत दी वरतों।
2: संस्कृत भाषा दा साहित विश्व विच सब तो प्राचीन व्यापक अते विज्ञानिक है। भारतीय भाषावां दी जननी होण दे नाल नाल इह कई आधुनिक भाषा विज्ञान दीआं पद्धतियां दी प्रवर्तिका भी है। व्याकरण दा जो अनुशासन इस भाषा ने दिता है ओ विश्व दी किसे होर भाषा विच दिखलाई नहीं दिंदा। किसे भी भाषा विच पकड़ मजबूत करन लई उसदा व्याकरण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कुछ साधारण अते सरल नियमां दी जानकारी अते नीता प्रति उसदा प्रयोग रोजमर्रा दे जीवन विच करन नाल उस भाषा नूं पूर्ण रूप नाल जानिया जा सकदा है। वैदिक संस्कृत नूं लौकिक संस्कृत दे रूप विच स्थिर करन च प्रसिद्ध व्याकरणकार पाणिनी दा बहुत बड़ा योगदान रहा है। पाणिनी ने 500 ईस्वी पूर्व दे नेड़तेड़ अष्टाध्यायी नाम दे ग्रंथ दी रचना करके संस्कृत दा रूप स्थिर कर दिता। इस ग्रंथ नूं आधार बना के जिस साहित दी रचना हुई उस नूं लौकिक संस्कृत कहा जांदा है। संस्कृत भाषा नूं सिखण लई सब तों पहलां वर्णमाला दा ज्ञान होना जरूरी है। संस्कृत व्याकरण विच बनाए गए सूत्र स्वर व्यंजन अते उन्हां दा उच्चारण स्थान भी निर्धारित करदे हन। इह 10 सूत्र जेकर याद कर ले जाण तां कदी भी कोई भुलेखा या गलती होण दी संभावना नहीं रहिंदी। वर्णमाला विच सब तों पहलां हन स्वर। संस्कृत विच 13 स्वर मन्ने जांदे हन अ आ ई ई उ ऊ री री ली ए ऐ ओ औ। ए स्वर 3 प्रकार दे हन। ह्रस्व स्वर जिस दे उच्चारण विच एक पल दा समा लगे जिवें कि अ ई उ आदि। दीर्घ जिस वर्ण दे उच्चारण विच 2 पल या दुगना समा लगे जिवें कि आ ई उ ए ऐ आदि। प्लुत स्वर जिस वर्ण दे उच्चारण विच 3 मात्रा काल अपेक्षित होवे इन्हां दा वर्णन उम या संबोधन करदिआं कीता जांदा है। इस तरह इन्हां दी संख्या 21 या 22 मन्नी जांदी है। स्वर तों बाद व्यंजनां बारे जानना जरूरी है। ओह वर्ण जिन्हां दा उच्चारण करदे समय स्वरां दी सहायता ले जांदी है व्यंजन कहे जांदे हन। इन्हां दे भेद इस प्रकार हन। स्पर्श व्यंजन क तों लै के म तक क्वर्ग च्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग अते प्वर्ग ए 25 हन क्योंकि इन्हां दे उच्चारण विच जीव कंठ आदि दा स्पर्श करदी है इसलिए इन्हां नूं स्पर्श व्यंजन कहा जांदा है। अंतस्थ ए 4 हन य र ल व। उच्चारण दी दृष्टि तों इन्हां दी स्थिति स्वर अते व्यंजना दे मध विच आउंदी है इसलिए अंतस्थ कहे जांदे हन। ऊष्म ए भी 4 हन श श स ह। इन्हां दा उच्चारण करदे समय गले विच घर्षण पैदा हुंदा है जिस नाल ऊष्मा उत्पन्न हुंदी है इसलिए इन्हां दा नाम ऊष्म व्यंजन है। कुछ अयोगवा हन जिवें कि विसर्ग शब्द तों बाद आउण वाले 2 बिंदु चिन्ह ए ह दी अर्ध ध्वनि है। दूसरा है जीवा मूल्य जो क अते ख तों पहलां उच्चरित होण वाला अर्ध विसर्ग है। उपद मानिए प अते फ तों पहलां उच्चरित होण वाला अर्ध विसर्ग। अनुस्वार स्वर तों बाद नासिका तों उच्चरित होण वाली ध्वनि। अनुनासिक इस दा उच्चारण नक अते मुंह नाल हुंदा है। इस दा चिन्ह अर्ध चंद्र बिंदु है। इस तरह जेकर वर्णमाला दी कुल संख्या स्वर व्यंजन अते योगवा मिला के 63 या 64 मन्नी जांदी है। स्वर अते व्यंजना दा उच्चारण स्थान निर्धारित करन लई 10 सूत्र बनाए गए हन। अ आ क्वर्ग अते ह दा उच्चारण स्थान कंठ है। इस दा सूत्र है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। ई ई च्वर्ग य अते श इस दा उच्चारण स्थान तालु है। इस दा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। इसी तरह री री ट्वर्ग र अते श इस दा सूत्र है ऋतु रशा नाम मूर्धन्य। ली ली त्वर्ग ल अते स इस दा सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता। ऊ ऊ अते पवर्ग इन्हां दा उच्चारण स्थान ओष्ठ कहे गए हन। इन्हां दा सूत्र है उपू पदमानिया नाम औष्ठो। ए ए ए देतो कंठ तालु। ओ औ दा सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम। व दा उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम। इस दा सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। अते अंगा अना न मा नासिका अनुस्वारस्य च

Hi dear friends, welcome to Love Hai program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए, व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो. दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं. हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. सोचने की शक्ति. यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम

करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। सोचने की शक्ति, यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता, एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना, धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवा में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना, अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है, आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन, सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। ये व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति, एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना, एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व, एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये

0: गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye.
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਮਹੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਹਸੁਣੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।
3: ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਸਟਮਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 20ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,
4: ਸਭੀ ਨਿਊਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਂਪਲੋਈਜ਼ ਕੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਆਜ ਵਰਚੁਅਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਹੋਗਾ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਮਾਨਯ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਮੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਡ that the honorable prime minister will personally address the young appointees and congratulate them on this important milestone. His words of encouragement will inspire them as they begin their journey in the public service, a journey that is not only about the career but also about responsibility and nation building. India is today moving with confidence towards the vision of honorable prime minister of Viksit Bharat 2047. हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक डेवलप्ड, प्रॉस्पेरस और सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है। दैट विजन विल अल्टीमेटली बी रियलाइज्ड नॉट मेरली थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बट थ्रू द कमिटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड एवरी वन ऑफ यू हु रिसीव्स एन अपॉइंटमेंट लेटर टुडे विल हैव अ मीनिंगफुल रोल इन दिस इंपॉर्टेंट मिशन। And to our young appointees, I would like to say only this much that the letter you received today is the end of one effort that you have been selected and you will be receiving appointment. But this is will be a beginning of a much larger journey. You are entering government service at a time when citizens expect speed, fairness, transparency and courtesy from every office they approach, and rightly so. आप जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे उसमें आप लोग को जज इससे नहीं किया जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं या किस रैंक की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, बट आपको जज किया जाएगा इस तरह से कि आप अपनी जो ड्यूटी है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको किस तरह से डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम सभी की रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू सर्व विद इंटेग्रिटी, ईमानदारी से अपना काम करें, कीप लर्निंग। आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल सेट को लगातार अपग्रेड करते रहें एंड बी रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल यू सर्व। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उन लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहें जिनको आप सर्व करने जा रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ईच वन ऑफ यू विल कैरी फॉरवर्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू यू विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी एंड विल मेक योर फैमिलीज एंड द नेशन प्राउड।
3: केंद्रीय राज मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय रोजगार मेले नव नियुक्त कर्मचारियों नु नियुक्ति पत्र संबंधित दस्तावेज सौंपे अते अपने संबोधन च कहा,
5: आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी बच्चों पदोन्नति पाएंगे। जैसा बताया गया ये 20वां दौर है, आज से पहले 19

0: रोजगार मेरे प्रधानमंत्री के सोच के अनुसार देश के अंदर हो चुके हैं और ये पिछले 3-4 साल से आयोजित होते आए हैं। 2022 में इसके अंदर प्रधानमंत्री ने सोचा कि जो बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं और जो बच्चे हम जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन वो तो कम से कम गवर्नमेंट सर्विस के अंदर मौजूद रहेंगे आने वाले समय के अंदर। तो उन्होंने ये सोचा कि रोजगार देने से पहले एक बार प्रधानमंत्री अपना लक्ष्य उनको समझाएं। और 12 लाख से अधिक इन 19 रोजगार मेलों के अंदर बच्चों को सर्विस मिली है और आज सभी कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं। PSC से आए हो, सेंट्रल बोर्ड से आए हो, जिनकी भी नियुक्ति आज हो रही है तो कहते हैं माँ बाप गवर्नमेंट सर्विस में चला गया, सरकारी नौकरी में चला गया। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आज आप पब्लिक सर्विस के अंदर दखल करेंगे, अपना पैर पहली बार पब्लिक सर्विस के अंदर रखेंगे और लक्ष्य क्या है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित देश बनाए। लोग कहते हैं कि इतिहास दोहराता है अपने आप, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और जो भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहलाया जाया करता था, जिसने गुलामी भी झेली है, आज गुलामी के असर से बाहर निकल करके अपने आप अपने दोनों पैरों पे खड़ा होकर के छाती तान करके आज के दिन अपना स्थान विश्व के अंदर दोबारा से लेना चाहे, तो ये उमंग और ये उम्मीद मैं समझता हूँ ना समझी की नहीं है, वास्तविकता की है कि हिस्ट्री रिपीट करेगी और दोबारा से हिंदुस्तान एक बार फिर से एक सोने की चिड़िया बन करके उभरेगा। हमारी तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से योजनाएं बनी कि जो लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाते हैं लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वैकेंसीज कम थी, काबिलियत उनकी थी, नौकरियां कम थी तो नहीं रह पाए, नौकरी नहीं किए। आज भी जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मालूम कितना आपने पढ़ना पड़ा, कितना आप लोगों की बापों की उम्मीद, बामाओं की उम्मीद आपके साथ जुड़ी हुई थी। आप सब लोग आज के दिन अगर आए हैं तो कुछ लोग रह भी गए। और हमारी तरफ से ये स्कीम है कि जो फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, सिलेक्ट नहीं होते, फिर भी उनकी लिस्ट जारी रहेगी। किस लिए जारी रहेगी कि प्राइवेट कंपनीज और कोई अगर उनमें से सिलेक्शन करना चाहती है तो वो उनमें से सिलेक्शन कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी काबिलियत दर्शा चुके हैं अनेक जगहों के ऊपर। आपके अलावा जो पीछे रह गए वो लोग भी नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन और आने वाले समय के अंदर करेंगे। दूसरा भारत सरकार की तरफ से योजना है स्किल के बिना कोई काम सही तौर के ऊपर नहीं हो पाता। तो इंटर्नशिप स्कीम एक भारत सरकार की तरफ से आज के दिन लागू है और उसके अंदर 5,000 रुपया मासिक भारत सरकार देती है उन लोगों को जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर स्किल अपनी दिखा करके, स्किल अपनी दर्शा करके नौकरी करते हैं ताकि आने वाले समय के अंदर पक्की नौकरी उनको भी प्राप्त हो जाए। और ये जो हमारी स्कीम्स हैं उसके आंकड़े अगर दूं तो आप मानोगे कि भाई सही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आज के दिन हवा के अंदर भाषण नहीं दे रहा। 2017-18 के अंदर कुल मिलाकर के देश के अंदर जो सरकारी नौकरी सेंटर की पाए हुए थे उनकी संख्या थी 47.5 करोड़ और यही आंकड़े अगर हम 23-24 के गिने तो ये बढ़ करके सरकारी नौकरी के अंदर 63.3 करोड़ हो गए, यानी कि 16 करोड़ का इंक्रीज इन भारत सरकार की नीतियों के अनुसार हुआ है, इन लोगों को नौकरी मिली है। उसके मैंने आपको आंकड़े बताया।
1: रोजगार मेले दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही समागम नु संबोधन करदिया कहा,
2: मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में त्योहारों का समय शुरू हो चुका है। इन खुशियों के बीच आज का दिन हजारों परिवारों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया है। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत तो है ही, साथ ही आपके माता पिता और आपके

0: परिवर्तनों की भी तपस्या है। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल की भी पहल की गई। साथ ही भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुल गए, नए मार्केट्स के रास्ते खुल गए और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है। साथियों, बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनी बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं।
1: समागम च वड्डी गिणती च नवे नियुक्त उम्मीदवारों तो इलावा वख वख विभागां दे अधिकारी अते नुमाइंदे मौजूद रहे। इस मौके लुधियाना कस्टम्स दी कमिश्नर वरिंदर कौर ने नवे नियुक्त उम्मीदवारां नूं सरकारी सेवा दे नवे सफर लई शुभकामनावां दित्तियां। समागम च नियुक्ति पत्र लैण वालियां नाल गल्लबात कीती तां उन्हां दस्सिया,
2: असीं आए हां जी गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज जिथे के रोजगार मेला लग्या ते नियुक्ति पत्र वंडे गए ने। साडे नाल इक मैम ने, नाम पुछदे पहला उन्हां दा।
3: यशिका गुप्ता।
2: यशिका, अज रोजगार मेले च तुसीं आए हो, कोई जॉब मिली है तुहानू?
3: हां जी मैम, मैनूं इंडियन ओवरसीज बैंक दे विच जॉब मिली है क्लेरिकल पोस्ट ते।
2: अच्छा, ते थोड़ा अपने सफर बारे दसो, पढ़ाई दा सफर किवें रिहा, किन्नी देर तो तैयारी कीती तुसीं?
3: थोड़ा टाइम

0: यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी रात 8:30 सुनोगे पंजाबी खबरां।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वीमी रोजगार मेले दौरान 51,000 तो वध नवनियुक्त नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब दे लुधियाणा विच केंद्रीय राज मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र तकसीम किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 14 न्यायिक अधिकारियों नूं दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड ते कर्नाटक हाई कोर्टां दे जजां ते वधीक जजां वजों नियुक्त किया। साबका केंद्रीय मंत्री ते बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू नूं अज लुधियाणा च मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे प्रोग्राम दे स्थान नेड़े प्रदर्शन करन लई हिरासत विच लै लिया गया। नेपाल सरकार ने पिछले महीने आए विनाशकारी हड़ां दे कारणां दी जांच लई 7 मैंबरी माहर कमेटी कायम कीती ते वीमी एशियाई खेडां अज तो जापान दे आईची नागोआ च शुरू हुईआं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल नूं अपनियां शुभकामनावां दित्तियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वीमी रोजगार मेले दौरान वख-वख सरकारी अदारियां विच नवे नियुक्त हुए 51,000 तो वध नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र तकसीम किए। इस मौके बोलदिआं श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों तो केंद्र सरकार नौजवानों नूं भविख दीआं चुनौतियां दा सामना करन लई जरूरी हुनर ते मौके प्रदान करन ते लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश यह भी यकीनी बनाना है कि देश के नौजवानों की सिक्ख्या ते हुनर बदलती अर्थव्यवस्था दी जरूरतों के अनुसार हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी खेत्र च रोजगार के मौकों को तेजी नाल वधाउण लई भी काम कर रही है। इस उद्देश्य वास्ते लगभग 1,00,000 करोड़ के खर्च नाल प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना तहत करीब 2 करोड़ नौजवानों के पहली बार कार्यबल विच शामिल होने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना तहत सरकार पहली नौकरी प्राप्त करने वाले नौजवानों नूं 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन दे रही है। नाल ही वध रोजगार के मौके पैदा करने वाले नूं भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों च करीब 40 देशों नाल मुक्त व्यापार समझौते किए ने जो देश के नौजवानों लिए मौकों के नवे राह खोल रहे ने। इन्हां समझौतों ने उद्यमियों लिए नवीं भाईवालों के बाजार खोले ने अते नौजवानों वास्ते रोजगार ते करियर के नवे मौके पैदा किए ने। उन्होंने कहा,
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
3: इस मौके अमला जनतक शिकायतां ते पेंशन राजमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले राही रोजगार सृजन ते भर्ती दे मुलांकण तो पता चलदा है कि सरकारी नियुक्तियां च काफी वाधा होया। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रणाली नूं बेहतर बनाउण लई कई पहलकदमियां कीतियां गईआं ने। वीमा रोजगार मेला अज देश भर च 45 थावां ते आयोजित कीता गया। इधर पंजाब दे लुधियाणा विच भी प्रधानमंत्री रोजगार मेले दा आयोजन कीता गया, जिस दौरान वख-वख सरकारी विभागां ते संस्थावां च नवनियुक्त उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र तकसीम कीते गए। इस मौके उम्मीदवारां नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय राज मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नौजवानां नूं रोजगार दे मौके प्रदान करना देश दे विकास लई महत्वपूर्ण है।
5: भारत वर्ष के नए जवान आज के दिन भारत की सेवा में शुरुआत करेंगे। 20 रोजगार मेले हो चुके हैं आज तक और 12,00,000 से अधिक लोगों को पिछले 3 साल के अंदर भारत सरकार की नौकरी करने को नियुक्ति पत्र मिले हैं। संदेश मोदी जी का भी यही है, ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आने वाले समय के अंदर जब हम अपनी कोशिश के अंदर भारत को विकसित बनाएंगे तो उन सभी बच्चों का बड़ा भारी योगदान होगा।
3: रोजगार मेले विच नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नौजवानों विच भी खुशी का माहौल देखने को मिला। उम्मीदवार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

0: रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
1: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाडी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके दिखाया।

0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
1: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
0: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
3: I think close to 8 cargo planes have arrived.
4: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
3: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
2: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा

0: स्थानीय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal

0: राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इससे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्की 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था, वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए ये पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्म युगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई। आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
1: सरकार को कुछ नहीं क्या
2: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
1: मालूम कहाँ गया माटी मिला
2: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। क्योंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुडी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़दागा रॉकी कंफर्म आयतु हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस अदक्के अवकाश इद्रु अवनन्नु मुगिसाकलिल्ल।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंतनाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान

0: पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
1: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते में रोशन
2: होश में आइए हुजूर, जरा हाँ
3: सुनिए मेरी बात, सुनिए। यहां से भाग निकलते हैं।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गई। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा?
2: कमली।
1: कमली,
2: बड़ा प्यारा नाम है।
1: मेरा नाम मंजू है।
2: अच्छा नाम है ना?
3: अरे पुत्रा भाई,
1: तू इधर रोज आती है?
2: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली
4: गल सुन,
2: क्या
1: तेरी कमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य।

0: कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो, लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पाकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: हाजिर हो गया।
4: जाओ।
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली? अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण है। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974

0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

सात बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दो बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उम्र

0: फिल्म इजाजत के लिए साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे।

बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मिली, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन, कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है, ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट, के रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा भिंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब, बड़ा दिखाते थे, तो ऐसे ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बस सफाई की जरूरत थी 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो

0: तो घर चेंज करने पड़े वरना वहीं रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो
1: जी।
0: पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहां आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने वाली औरत, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या

0: स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1,

इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी। कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
2: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कने एक लय पकड़ लेती है और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरु

0: हमें कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
1: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
0: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था जहाँ एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के 3 कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when we push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होने हॉन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
0: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली।
3: スポーツマンシップの精神にのっとり、大会の規則を尊重、遵守し、栄光と

0: ためにこの競技大会に参加することを約束します。
1: रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली।
2: वताश तचवा दाई निजुक काई आजिया क्योंगी ताई काई नो शिंपाई गिजुस याकुई नो दाइफोशी स्पोर्ट्समानशिप नो सेशी नी नोत्तोरी ताई काई नो किसोक ओ सोंचो जुन्शु शी फोसे ना जज्जी ओ ओकोनाउ कोतो याकसोक शिमास।
1: एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
3: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांग, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
1: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के

0: सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि LA 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
1: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
0: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे। सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9:00 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान।

0: हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर एमएमए तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशु भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे 10:20 होए ने। लॉन्सनो शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी पंडित हरविंदर कुमार शर्मा जी दा सितार वादन सुनोगे, राग तिलंग।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे हो शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सितार वादन सुन रहे हो कलाकार ने पंडित हरविंदर कुमार शर्मा हुण तुसी राग तिलंग सुन रहे सी और हम सुन रहे हैं तुम राग मिश्र पहाड़ी

दिवसीय शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम विच सितार वादन संभव सी कलाकार सन पंडित हरविंदर कुमार शर्मा मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ई जलंधर केंद्र है। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी रात 11 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी समाचार ते रात 11:05 ते सुनोगे अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध

0: कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटी बनती है।
0: इस अवसर पर

0: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटी बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिता में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
0: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin

0: लॉजिक नंबर मिला के पहले लकी कॉलर दोस्त क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत करन केड़े दोस्त साडे कोल पहुंच के नहीं दिखने वाली गल है केड़े दोस्त प्रोग्राम च एंट्री लेके साडे कोल पहुंचे नहीं आओ गल बात करनी है केड़े दोस्त ने साडे कोल पहुंचे नहीं नंबर मिला के हेलो
1: हेलो
0: सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे ने मनजीत कौर जी बहुत बहुत स्वागत है दिली दिल वालियां दी जिया नु इस्तकबाल और प्रोग्राम दी शुरुआत तुसी कर दी है जी होर सुनाओ तुहाडा की हाल चाल है और दिल्ली का की हाल है चलो असि दुआ करते हैं पहला मीह तुहाडे कोल बहुत पहुंचे हुए सी थोड़ा जा ਮੀਂਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ठीक है जी जमा तुसी सानू दे देता है उम्मीद है तुहानू गीत पसंद जरूर आएगा फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया चलो ठीक है जी फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया इदा ही कॉल करते रहो
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुक्रिया जी

लॉन्ग जी नंबर ला के दोस्त आए ने गलबात करते हैं। हेलो हेलो, फोन लाइन की लगता प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा राबता होंदे होंदे साडा कट हो जा रहा है फोन। मैं कोशिश करता जिन्ना जल्दी है इस चीज़ नूं असीं दूर करके थोड़े तक पहुँचते हैं। तद तक तुसीं गीत सुनो लखविंदर लखीवाला की आवाज़ च। मैं आया बस हुणे लाइन नूं ठीक करके।

देखो जी हुण तां लाइन मिलदी है नाल ही कट्टी जा रही है जो मैनूं मैसेज लगातार लाइन दे थ्रू ही जदों फोन आउंदा है एक मिनट दे विच तुसीं अपनी फरमाइश मैनूं जरूर दस सकदे हो लाइन दे विच प्रॉब्लम है पर गाना तुसीं फरमाइश जरूर दस सकदे हो धर्मा सागर जी फाजिलका तों आए सी जैसमिन सैंडल की आवाज़ से कहिंदे गीत सानूं जरूर सुना दिओ हुण अज दी इह प्रोग्राम दे विच शॉर्टकट थोड़ा जिहा सी लभिया तुसीं कॉल करनी है फटाफट अपनी फरमाइश और नाम दसना है मैं कोशिश करना है कि ऑन एयर तुहाडे नाल दा फरमाइश जरूर प्ले करदे हां जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती की तौर तक भेज रहे हैं मिलते हैं इस गीत तो बाद

बहुत सारी चिट्ठियां जो बहुत प्यार के नाल साढ़े तक भेजियां ने, भेजन वाले दोस्त जो साढ़े तक चिट्ठियां भेज रहे ने, रेहनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा, करुण वर्मा। अगली चिट्ठी की गल करिए जी, भेजन वाले दोस्त ने सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहिल बिट्टा ते उन्हों का पूरा बजाज परिवार, गांव खिरेका सिरसा इंद्रजीत तो कमलजीत नक्शी सागुन और हनी, मसीता डावाली तो दर्शनगुर इंद्रजोत नक्शी ते हनी उन्हों का पूरा परिवार, मुक्तसर बबू सिंह तिमान, मुक्तसर तो बलजिंदर कौर तिमान, नवनीत निशु भुपिंदर, नेड़े गगड़ हाजीपुर शहर तो मामा कहर, मामा सोहन, चिंतन मामा ते उन्होंने पूरे परिवार के दोस्त, तेश कुमार ते गुरमीत सिंह जी लिखते हैं किसी भी खास करके गुरमी नियमित खैरा का जोड़ा है गीत सुनना चाहते हैं, गुलाबी रंग थोड़े तक भेज रहे हैं, मिलते हैं इस गीत तो बाद।

तो सुथी नूतन शशि पल्ला हरिपाल कौर संदीप गुलानी आशा गुलानी सुनीता शर्मा सुनीता ढिल्लो लिखते हैं जी कोई भी पंजाबी गीत सानू शामिल करो कृपा अपनी पसंद का कोई भी गीत जरूर सुना दो हरजिंदर सिंह पाटिया एंजल पाटिया नदीप पाटिया पपी पाटिया बहुत बहुत शुक्रिया चिट्ठी लिखने लिए।

जी ठीक है वैष्णव लोड तो आय शर्मा विनय शर्मा योगेश शर्मा मेहंदी सारव शाइना शर्मा होने भेजिए मोहम्मदपुर सोतम ढाणी जितिया तो जीवन सिंह बुग शांति बुग सिमरन कौशल्या गुरचंद्र कुलदीप कीरत उन्होंने पूरा बुग परिवार पंचकुला सैक्टर नौ तो आशु चुक अश्विनी चुक गोविंद चुक टोनी दीवान लव दीवान राधे भाविक उन्होंने पूरा चुक परिवार गीत पंजाबी शामिल करने क्या जी बिल्कुल शामिल कर रहे हैं तो इस गीत

0: सीमा प्लीज रो ना, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं सी।
1: मेरी चुप ना करा करो ना, रो लैन दे, पता नहीं कदों दी कट कट के जी रही हूं, ना हंस पानी हूं ते ना ही खुल के रो पानी हूं। किस ना दर्द वंडामा अपना।
0: पर सीमा ये सब आखिर होया कि?
1: सरप्राइजिंग नहीं होया, मम्मी परिवार की गड्डी नू एक साइड लेके जाना चाहती सी, ते पापा पापा दूसरी साइड, कोई ना कोई एक्सीडेंट तो होना ही सी ना करो ना।
0: पर अंजू दीदी इस तरह बिना कुछ दसे अचानक चले क्यों गए? कोई ना कोई कारण तो रिया होवेगा, दीदी वर्गी समझदार कुड़ी।
1: मैं तेनू दीपक बारे दसिया सी ना?
0: हाँ तो कुछ हिंट दिता सी, फिर मैसेज भी भेजिया सी कि अंजू दीदी नू एक मुंडे नाल प्यार हो गया है, उदे सुपनिया दा राजकुमार दीपक, हो सकदा जल्दी ही तेनू दीदी दे व्याह दा कार्ड मिले।
1: हाँ करुणा, पर मौका आया ही कित्थे, मम्मी दे स्टेटस दे पूत ने उन्हां दा व्याह होने नहीं दिता।
0: की?
1: हाँ, मम्मी नू जदों सब कुछ पता लगा तो कोई भी फैसला लैण तो पहला मम्मी दीपक दे पिंड आप पहुंच गए, उदी हैसियत दी पड़ताल करन, उदे मापिया नू मिलन। ते तेनू पता है करुणा, उतो वापस आए मम्मी गुस्से दी मूरत बन के।
2: चंगा बेवकूफ बनाया तुसी प्योती ने। क्यों अंजू, की वेख्या तू उस दो कौड़ी दे मुंडे च जो तू उस ते लट्टू हो गई? कोई स्टेटस भी है उदा?
3: फिर वही स्टेटस, तेरे स्टेटस ने साड़ी जिंदगी गर कर छड़नी है। हुन बेटी दी जिंदगी विच क्यों जहर घोल रही है?
2: हाय राम, मैं गर कीती तुहाडी जिंदगी, सारी जिंदगी मैं चैन नाल ना बैठी, की सी इस घर च दो कुर्सियां ते एक पलंग, कपड़े रखने लई बाबा आदम दे जमाने दी अलमारी, हुन जाके मेरी वजह ना घर च कोई शक्ल निकली है, उस ते तोहमत है कि मैं तुहाडा सुख चैन खोया, जहर घोल लिया है, तबाह कर छड्डे है तुहानू।
3: ओ चल चल रहण दे अपनी बक बक, बहुत हो गई। मैं अंजू दा ब्याह उत्थे ही करांगा, आखिर की कमी है उस च, बैंक च नौकरी करदा है, नेक मुंडा है, कोई ऐब नहीं, होर की चाहिदा है? सुखी रहेगी साड़ी अंजू उस नाल।
2: केड़ा सुख मिलेगा साड़ी धी नू उत्थे, बैठन लई एक ढंग दा सोफा भी नहीं है उन्हां दे घर च, प्लास्टिक दियां कुर्सियां ने, ते मुंडे दा पियो की काम करदा है? जनाब दी कपड़े दी दुकान है, ओ साडे रिश्तेदार बनन दे लायक ने भला, अजे तां मेरे भैण जीजा तेरे ते हसदे ने, फिर कुड़मां ते वी हसणगे।
3: कोई हसदा तां हसी जावे, मेरा फैसला अटल है।
2: मेरा फैसला भी सुन लवो, जेकर बरात मेरे दरवाजे तक आई ते मैं उत्थे तेल पा के सड़ जाणा।
4: खुद नू क्यों, मैनू सार दे मम्मी, छुट्टी मिले झगड़ा ही मुक्के।
2: तू सलामत रह, तेनू क्यों साड़ना, मैं ही सड़ांगी, सारिया नू चैन मिल जूगा।
1: करुणा उस दिन पहली बार मुंह खोलिया सी दीदी ने मम्मी दे सामने, मम्मी ने भी देख लिया सी कि सारे ही उन्हां दे खिलाफ ने, तां भी चुप हो गए।
0: तो फिर दीपक नू मना कर दिता?
1: नहीं, मम्मी इनी जल्दी भी हार किथे मानदे ने, वो कुछ दिन तां इत्थे रहे पर परछावें दी तरह हर पल दीदी दे नाल ही रहे, दुनिया दी ऊच नीच उन्हां नू समझाउंदे रहे, ते फिर जदों दिल्ली वापस जाण लगे तां दीदी नू अपने नाल ही लै गए।
0: पर सीमा दीदी आराम नाल ही चली गई, उन्हें मना नहीं किया?
1: हाँ, हैरानी तो मैनू भी बहुत होई सी करुणा, मैं दीदी नू पुछया भी तो उन्हें इहो कहा, सीमा मैं नहीं चाहती कि मेरे करके घर विच कलेश होए।
0: फिर अंजू दीदी वापस कदों आए?
1: दीदी वापस आई नहीं, 15 दिन बाद मम्मी दी मेल ते एक मैसेज आया, लिखा कि उन्हें दीदी का रिश्ता एक बहुत वड्डे घराने च कर दिता है, उन्हें कोल कोठी है,

0: जदों मलवई गिद्धे दी गल चलदी ए तां बोलियां पाउण वाले बोलीकारां दी गल वी आप मुहारे मूंह ते आ जांदी ए। मुढले बोलीकारां विच छज्जू सिंह दंदराला खरौड़, शरफदीन करतार लोपोंदा ते छोटा सिंह कुसेवाला दे नां सत्कार नाल लए जांदे ने। आम तौर ते गिद्धे दीआं बोलियां पाउण दी शुरुआत किसे धार्मिक बोली नाल कीती जांदी ए ते इस तों मगरों बोलियां दी लड़ी लग जांदी ए।
1: पहला ना उस रब दा लिए जिसने जगत बनाया भी बात बात दे फुल सजाते ओ बाल्टी बात दे फुल सजाते सोना बाग लगाया भी कदे किसे दी कहीं नहीं मनदा ओ कदे किसे दी कहीं नहीं मनदा करदा जो मन आया गिद्दा पा मुंडिया।

पंजाब दी रूह ने ते मेलियां दी रूह ए मलवई गिद्दा। मालवे दे मशहूर मेलियां विच जगरावां दा मेला, छपार, जर्ग ते तख्तपुरे दे मेलियां दा आपो अपना इतिहास है। जिथे इना मेलियां च मदारियां दे करतब, पहलवाना दे कोल ते कविशर अपनी कला दा प्रदर्शन करदे ने, उथे मलवई गिद्दा इना मेलियां विच खिच दा केंद्र हुंदा है। जदों गिद्दे च खड़ा कोई गबरू उची हेक ला के बोली पौंदा है, तां लोकां दी भीड़ मल्लो मल्ली गिद्दे दे पेड़ वल नूं हो तुरदी है।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो, नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

संभालता दम न बिरथा जाए, जन्म मरण का पाओ गया जीवन पदवी पाए। इस शब्द गायन की तसी पाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

इस भजन के नाल ही भगती संगीत का प्रोग्राम इतने ही खत्म होता है। डीटेल्स दी पंजाबी प्रसारण सेवा का जलंधर केंद्र है। तुम सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वे तड़के दे चल वज चुके ने। आओ तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलते हैं, जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण

पौड़ी दान महिंडा तली खाक जय मिले तो मस्तक लाई है कूड़ा लाले छड़ियो कमा लख त्याई है फल ते वे हो पाई है जे भी कर कमाई है जो होवे पुरख लिखिया ता टूटना दी पाई है।

0: सुख दारू सुख रो पया जा सुखताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाऊं करी ना होई बलिहारी कुदरतो से आ तेरे अंत ना जाई लखे आला जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर है तू सच्चा साहब सिर्ष वाले जिनकी ती सो पार पया कौन नान करते किया बाता जोक्ष करना
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वे शब्दं ब्रह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेहो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बाद दिवस जे को जाने पेहो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बदा जल रहे जल बिन कौम बिन हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो।

तिन्नर सहस ते नर गलीचे बह ते नर उठप बिठप सुख लह ते नर संसार मह अभय पट रिप मत ते है।

0: सेवा जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं गुरु अमरदास कारण करण जीव तो रख तिव्रहो गुरु अमरदास कारण करण जीव तो रख तिव्रहो
1: तिखे के गुर ज्ञान और ध्यान तत सो तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्ते लिवलावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत न तावे निरंकार के वस्य देश हुकम बुझ विचार पावे कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलो सोए पिख कहे सहज रंग दर्शन दियो
2: रहो संत हों टोला साध पाओ तेरे डिठे सन्यासी तपस्या मुखो ए पंडित मिठे बरस ए कहो फिरियो किनेनो परचाओ लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन कै गुण हो क्या कहो गुरु दही मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो
3: पैर समाध सुनाह ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तणख कर गयो भगत शीला सर लड़ियो पै निरपोहर टल मन शब्द गुर ने जागड़ियो काम क्रोध लोभ मोहपत पंच दूत दिखंडियो पलो पुहार ते ज्योतना निरपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सलपन तै दल जितो एव युद्ध कर

वट गुरु गोर बिन तर आना कोए गोर प्रसाद प्रभ पाई गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया तिन श्री रामदास सोठी तिरथ प्यो हर का ना।

0: सागर बंदेओ सिक तारे सो प्रसन्न सिरियात पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सद पन तू अटल राज अपग दल।
1: सत सुरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत वर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे कर तारे संजोग सत गुरु।

0: परम प्रफुल्ल सुत धारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई
1: सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए

सज्जन सच्चा पात साहु सिर सहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा विसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर सहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सार दीन दयाल न तुम सार अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान जान कौ पूरन दीजै हम सार दीन दयाल न तुम सार आब पतियार क्या कीजै

सारे दीन दयाल न तुम सारे, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै, जान